0: सूरत हाल की जल्द अज जल्द बहाली का मुतालबा किया है।
1: सऊदी फजाई फोर्सेस ने मक्का मुकरमा के करीब यमन के खोसी ग्रुप की तरफ से दागे गए ड्रोन को फजा में रोक कर तबाह कर दिया।
0: इस्लामी तआवुन तंजीम ने इस्लाम के मुकद्दस शहर मक्का और मदीना के खित्ते पर किए गए मकरूह हमलों की मजम्मत की है।
1: और ईरानी नान के एक्स ने अपने उर्वस में वाकया जजीरा कश्म की फजाई हदूद में अमरीका का एक MQ-9 नस्ल का ड्रोन मार गिराया है।
0: और अब खबरें तफसील के साथ।
1: वज़ीर ख़ारिजा हक्कान फिदा ने अपने दौरा शाम के ज़िम्मे ख़ारिजा पॉलिसी के हवाले से अहम बयान जारी किए हैं। वज़ीर फिदा ने इस बात का इशारा देते हुए कि वो यूनान के साथ अच्छे हमसायगी तल्लुकात उस्तवार करना चाहता है कि हम नहीं चाहते यूनान कुव्वतों का खिलौना बने जो खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के दर पे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया गैर फौजी हैसियत पर जजैर को मुसल्लह करना तुर्की के लिए एक संगीन खतरा तश्कील देता है। उन्होंने इंतजामी को बैन अल-अक़वामी वादों और इतिहाद के जज्बे के मुताबिक काम करने की दावत विधि। शाम में अपने राबतों का जिक्र करते हुए वजीर फिदान ने कहा, दमिश्क में जिंदगी मामूल पर आ रही है, अलबत्ता खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा वजह और सबब इसराइल है। शाम का दहशत गर्दी और पाबंदी के फरिश्तों से निकलने की अहमियत की तरफ तवज्जो मबजूल कराते हुए फिदान इस बात पर जोर दिया, खित्ते के मालिकों ताउन और पुरअम सफारकारी के गिर्द मुत्तहिद होना चाहिए। वजीर फिदान ने यह भी बताया कि सऊदी अरब पर होने वाले हमलों के खिलाफ तुर्किया यकजहती का इजहार करते हुए उन्होंने मतलब किया कि मक्का अलायंस को इदारा जाती शक्ल देने का अमल आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। फिदान ने कहा, इनका मकसद मक्का इतिहाद को वसअत देना है, इसके बाद मजीद ठोस इकदाम उठाए जाएंगे।
0: वज़ीर ख़ारिजा खाकान फिदान ने अपने हुरमुज़ से महफूज बिला तातुल और आज़ादाना आमदोरफ्त और जंग से पहले की सूरत हाल की जल्द अज जल्द बहाली का मुतालबा किया है। आज़रबाइजान के दारुकूमत बाकू में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से बढ़ते हुए जवाबी हमलों ने अमन की कोशिशों को शदीद नुकसान पहुँचाया है, जबकि उन्होंने ईरान से वाबस्ता इस तनाज़े को सफारतकारी के जरिए हल करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान की सलामती और इस्तेहकाम का बराह रास्त असर तुर्की और आज़रबाइजान पर पड़ता है। उन्होंने मजीद कहा कि अंकरा इस बहरान के हल में मदद के लिए तमाम मुतालिका फरीकैन के साथ मुसलसल राबते में है।
1: सऊदी फजाई दिफाई फोर्सेस ने मक्का मुकरमा के करीब यमन के खोसी ग्रुप की तरफ से दागे गए ड्रोन को हवा में ही रोक कर तबाह कर डाला। सऊदी क्यादत में कायम फौजी इतिहाद ने यह मालूम फ्राहम की है। इतिहाद के तर्जमान तुर्की अल मालकी ने बताया, ड्रोन को ममनुआ फजाई हदूद में दाखिल होने से पहले ही रोक दिया गया था, जिसका मलबा शहर के जनूबी हिस्से में गिरा। अलमालकी ने इसे मक्का मुकरमा को निशाना बनाने की खुशियों की दूसरी कोशिश करार देते हुए कहा कि हरमैन शरीफैन और ज़ायरीन की सिक्योरिटी एक सुर्ख लकीर है। उन्होंने मुस्तकबिल में ऐसे हमलों को रोकने के लिए सख्त इकदाम उठाने का अज़्म भी जाहिर किया।
0: इस्लामी तआवुन तंजीम ने यमन के हौसियों की जानिब से मक्का और मदीना के खित्ते पर किए गए मकरूह हमलों की मजम्मत की है। तंजीम ने जारी करदा एक्स पर अपने बयान में कहा है कि इस हमले में सऊदी अरब के खिलाफ जारी जारियत की हम मजम्मत करते हैं। बयान में कहा गया कि इस्लामी तआवुन तंजीम का जनरल सेक्रेटरीट हूसी ग्रुप की जानब से मक्का और मदीना के खित्ते पर किए गए मकरूह हमलों और ममलिकत सऊदी अरब के खिलाफ उसकी मुसलसल जारियत की मजम्मत करता है। तंजीम ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के हमले शहरियों में खौफ पैदा करते हैं, मुकद्दस मकामात और मसाजिद की हुरमत को पामाल करते हैं, दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को भड़काते हैं। इसके साथ ही तस्दीक की कि मुकद्दस मकामात, इबादत गाहों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ इकदाम एक दहशतगर्दाना अमल हैं जो इस्लामी इकदार और बैन अल-अक़वामी उसूलों, कवानीन और जवाबित के साथ मुताबिकत नहीं रखते। सऊदी अरब के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए इस्लामी तआवुन तंजीम ने रियाज की जानब से जारहियत को रोकने, अपनी कौमी सलामती और खुदमुख्तारी के तहफ़ और मुकदस मकामात की हरमत को बरकरार रखने के मकसद से उठाए जाने वाले तमाम इकदाम के लिए अपनी हिमायत का इरादा किया है।
1: ईरानी नान के एक्स ने अपने उर्वस में वाकया जजीरा कश्मीर की फजाई हदूद में अमरीका का एक MQ-9 किस्म का ड्रोन मार कराया है। ईरान के पासदार इंकलाब की जानिब से इस मौजू पर एक तहरीरी बयान जारी किया गया। बयान के मुताबिक मुकामी वक्त के मुताबिक रात 2:29 पर ट्रैक किए जाने वाले ड्रोन को ईरान के फजाई दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाकर मार गिराया। बयान में दावा किया गया है कि इस वाक्य के साथ ही अब तक मार गिराए जाने वाले अमरीका के MQ-9 टाइप ड्रोन्स की तादाद 52 तक पहुंच गई है। रात के औकात में कश्मीर जजीरे के खुले समंदर में धमाकों की आवाजें सुने जाने की इतलात मिली हैं। अलबत्ता इन दावों के हवाले से अमरीकी फौज की तरफ से ताहाल कोई बाज़ाब्ता सरकारी बयान सामने नहीं आया।
0: फिलिस्तीनी ज़राए और इसराइली हुकाम ने तस्दीक की है कि इसराइल ने फ़िज़ाई हमले में फ़िलिस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की मुसल्लह शाख इज़्ज़ुद्दीन अल-ग़स्साम के रफा ब्रिगेड के कमांडर नाइल अबू उबैद को हलाक कर दिया है। नतन्याहू और वजीर

0: बैनन के खिलाफ एक दोस्ताना मैच होगा। अर्जेंटाइन फुटबॉल फेडरेशन के सदर ने वादे किया कि यह मैच मैसी के लिए एक अलविदाई मैच की हैसियत रखेगा, जिन्होंने 31 अगस्त को यह कहते हुए बैन अलावी मुकाबलों से रिटायरमेंट का ऐलान किया था कि अब उनके पास देने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा है। क्लाडियो टापिया ने अपने जारी करदा वीडियो पैगाम में इस अलविदाई तकरीब को अपने ही मुल्क में मैसी के लिए वाकई एक मुस्तहक अलविदा करार दिया है। याद रहे कि मायनाज खिलाड़ी ने अपनी कौमी टीम के साथ खेले गए 200 से जायद मैचों में 125 गोल स्कोर किए हैं। उन्होंने अपना आखिरी गोल 2026 फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में मिस्र के खिलाफ किया था। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें खत्म हुई।
1: سالم صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے مخاطب ہیں، تو آئیے مراد بوس کی آواز میں ایک ترکی گیت سنتے ہیں۔ گانے کے بول ہیں جان کے نارم۔